0: பாவேந்தர் சொல்வது போல். எனவே தமிழுக்கு முதலிடம் தர வேண்டும். வந்தே மாதரம் குறித்து வாதிக்க வேண்டும் நாடாளுமன்றம்.
1: ஹியர் தி பிராக்டிஸ் இன் தமிழ்நாடு இஸ் டு பிளே தமிழ் ஆந்தம் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் எண்ட் நேஷனல் ஆந்தம். தட் இஸ் த ப்ரொசீஜர். பட் திஸ் டைம் தி கவர்னர் வாண்ட்ஸ் வந்தே மாதரம் டு பி சங் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தென் தமிழ் ஆந்தம். தட் இஸ் ராங். தட் இஸ் நாட் த ப்ராக்டிஸ் இன் தமிழ்நாடு. தட் ஷோஸ் தட் விஜய் இஸ் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் பிஜேபி.
2: A fresh controversy has erupted in Tamil Nadu just hours after the newly elected Chief Minister Joseph C. Vijay had been sworn in. In fact, during the swearing-in ceremony, the event of sequences went through such that at the concluding end, there was, Vande Mataram, there was the national anthem, and then the Tamil Thai Vaazhthu, which was... sang at the very last end. And that's what the CPI has questioned. CPI, remember, is one of the allies of TVK that has come out in support for the Tamilaga Vetri Kargam as they have gone ahead and formed the government. The question right now that CPI has placed before Vijay and TVK is that who was responsible for the changing of sequence?
3: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has carried out a major cabinet expansion in what is being seen as a significant political recalibration ahead of the 2027 assembly elections. As many as 6 ministerial berths were filled with an eye on the upcoming UP assembly polls. BJP is working on a strategy to give more representation to Brahmin, Jat, Dalit, Parsi, Valmiki, Loth and other backward communities as part of its caste calculus. Now, among new names, Kailash Rajput from Tirwa in Kannauj and Surendra Dilher from Kher in Aligarh have been inducted as ministers. Dilher, a prominent Dalit leader from the Valmiki community, is expected to represent the party's outreach to Dalit voters, while Rajput's inclusion is aimed at strengthening support from the Loth community. The development comes as a politically crucial time for the ruling BJP, which is looking to consolidate its social coalition after the setbacks it faced in Uttar Pradesh during the 2024 Lok Sabha elections.
4: तोमर जी, किस तरीके से देख रहे हैं जो एलिवेशन हुआ है?
5: देखिए, हम लोग विद्यार्थी परिषद के समय से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और हमारी पार्टी बड़ी बारीकी से, हमारा पार्टी नेतृत्व, राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व सभी चीजों की मॉनिटरिंग करता है. पार्टी ने जो निर्देश दिया है, सरकार का जो निर्देश है, जो दायित्व मिलेगा उसका निर्वहन करेंगे.
4: आज आप पहुंचे हैं, आपके पुराने मित्र सब वहां मौजूद रहे, क्या कहेंगे? बातचीत हुई, वार्ता हुई मुख्यमंत्री से, क्या कुछ आगे करना है?
5: देखिए, हम लोग टीम वर्क पे विश्वास करते हैं. एक टीम के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे.
4: गवर्नर साहिबा भी वहां मौजूद रही हैं, कुछ हिदायतें मिली हैं?
5: देखिए, लगातार उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता है और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उनका मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व लगातार उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहा है.
4: सपा सवाल उठा रही है सियासत पे, यानी ये कुल मिलाकर जो जाति समीकरण की बात हो रही है, इन सारी चीजों पर?
5: देखिए, हम लोग सभी का साथ, सबके विकास की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर चलती है और वास्तव में सभी जातियों का सामंजस्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है.
6: कितना अच्छा दिन है आज, भारतीय जनता पार्टी मातृ डे है और मातृ डे में आज मुझे शपथ दिलाई है. तो आप जानते हो कि महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति कितना ज्यादा संवेदनशील है भारत.
4: अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि एक्सपेंशन को लेकर, कि समीकरणों को लेकर.
6: नहीं, वो गलत है, सब गलत है. वो अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है तो क्या बोले, यही बोलेंगे ना? कुछ बचा होता तो बोलते, कुछ बचा ही नहीं है. जो जब से 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम लोग नारा लगाते थे बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है. आज कोई उनको नारा लगाने के लिए नहीं है.
3: As the war escalates in West Asia and global markets remain on edge, Prime Minister Narendra Modi has issued an appeal to citizens, calling it the need of the hour. Prime Minister Modi has urged citizens to help conserve India's foreign exchange reserves amid fears of economic pressure from the conflict. The Prime Minister has appealed to people to use fuel efficiently and prefer public transport and avoid buying new foreign products. He has also urged citizens to avoid buying gold and defer foreign travel for at least a year. Prime Minister Modi also called on families to reduce edible oil consumption and on farmers to cut chemical fertilizer usage by 50%. Prime Minister Modi reasoned that India spends massive foreign currency on oil imports, fertilizers and gold purchases. He appealed that patriotism is about responsible living during difficult times. He said at the same time that the government is bearing all the pressure of the war and not letting people bear the brunt. The remarks have triggered a sharp political backlash. The Congress has accused the Prime Minister of being clueless on energy security and pushing citizens into inconvenience instead of building strong contingency plans. Alleging lack of planning by the government, the Congress has demanded stronger fuel reserves to tackle any fallout from the West Asia crisis.
7: जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है. हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए. साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा. साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है. एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे. आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे. विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा. खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है. हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो. अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है. आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी. इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है. साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है. युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं. अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है. भारत सरकार इस युद्ध के पिछले दो महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। साथियों, कोरोना काल के दौरान ही दुनिया सप्लाई चेन के बहुत बड़े संकट से गिर गई थी। कोविड के बाद यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया, उसने दुनिया की परेशानियां और बढ़ा दी। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, इन तीनों चीजों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। बीते 5-6 वर्षों में इस संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपको याद होगा उस समय और आज भी फर्टिलाइजर की एक एक बोरी दुनिया में 3-3 हजार रुपये में बिक रही थी। एक बोरी का 3 हजार रुपया कितना आप बताएंगे? एक बोरी का कितना? आंकड़ा नहीं बोलिए मुंह से, 3 हजार रुपया। एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? और भारत के किसानों को वही खाद की बोरी 300 से भी कम रुपये में दी जा रही है।
3: That's all we have for you in this bulletin. Time for a short break now. More news updates continue on the other side.
8: You are watching India Today.
9: Owning a home is full of surprises. Some wonderful, some not so much. And when something breaks, it can feel like the whole day unravels. That's why HomeServe exists. For as little as $4.99 a month, you'll always have someone to call. A trusted professional ready to help, bringing peace of mind to 4.5 million homeowners nationwide. For plans starting at just $4.99 a month, go to HomeServe.com. That's HomeServe.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
10: You've always believed in students, their potential, and what they can become. At WGU School of Education, we help current and aspiring educators become great teachers with bachelor's and master's degree programs that are flexible, accredited, and built for real life. With personal support and your pathway to the classroom in any of the 50 states, WGU is where your love for education meets a path to impact. Because teaching isn't just a career, it's a calling. Learn more at wgu.edu.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
12: So sorry.

0: वाह दीदी वाह, सॉरी जा दीदी जा, बंगाल में भी कमल है खिला, वाह।
1: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे।
2: Joseph is a young man.

0: In his very first act as Chief Minister, Vijay signed key orders providing 200 units of free power and setting up a special task force to tackle the drug menace and ensure women's safety. However, with Tamil Nadu already reeling under heavy debt, these fresh promises are expected to put an additional burden on the exchequer. The real question is, will this Jananayagan-style administration be sustainable? Take a look at this news report.
1: Joseph Vijayanum Nan.
2: It is a new dawn in Tamil Nadu. The Vijay era has finally begun. Superstar delivered a power-packed first speech after taking oath as Chief Minister of the state. He announced the beginning of a new era of real secular and social justice. Vijay said he represents Hindus, Christians and Muslims while thanking the voters of Tamil Nadu.
1: பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் அப்படின்றதா நம்ம சமரசம் இல்லாத அடிப்படை கோட்பாடு. சிறுபான்மை சகோதரர்களே, உங்களுக்காக நம்ம டிவிக்கு அரசு கூடவே நிற்கும். உங்களுக்கு அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் வேணாம். இந்து முஸ்லிம் கிறிஸ்தவர்களுக்கான முகம்தான் இந்த விஜயனுடைய முகம். அதுல 100% நீங்க இந்த விஜயை நம்பலாம்.
2: Vijay also issued a heartfelt shout-out to Gen Z supporters. Vijay promised transparent, corruption-free governance in his first speech, asserting his government would work solely for the welfare of the people.
1: ஒரு ட்ரான்ஸ்பரண்டான ஒரு கவர்மெண்டா, அதாவது இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இந்த நிலைமையில தான் இருக்கு அப்படின்றத உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு, I just want to take it forward from there. நான் சொன்னதெல்லாம் படிப்படியா நிறைவேற்ற நான் ட்ரை பண்ணுவேன், நிறைவேற்றுவேன். அதே நேரத்தில் எனக்கு கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் உதவியாகவும் ஒத்துழைப்பாகவும் இருக்கும். இது உங்களுடைய ஆட்சி.
2: Vijay asserted that his administration will have zero tolerance against graft and would take strong action against corruption.
1: இந்த விஜய் தப்பு பண்ண மாட்டான், தப்பு பண்ணவும் விட மாட்டான். அது யாராக இருந்தாலும் சரி, என்னோட கவர்மெண்ட்ல என் கூடவே இருக்கிறவங்களாகவும் சரி, விட மாட்டான். சப்போஸ் யாருக்காவது அப்படி ஒரு எண்ணம் மனசுல இருந்துச்சுன்னா, நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம், ஒரு ஆட்டம் ஆடி பார்க்கலாம் அப்படின்ற எண்ணம் யாருக்காவது இருந்துச்சுன்னா, இப்பவே இந்த நிமிஷமே அதை எரேஸ் பண்ணிருங்க.
2: Vijay even used the opportunity to take a dig at DMK and accuse Talent's party of leaving a debt of 10 lakh crore rupees on the exchequer.
1: இன்னொரு விஷயமும் நான் இங்க சொல்லணும். இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இருக்கிற அந்த நிலைமையை பத்தி நான் உங்ககிட்ட நான் சொல்லணும். கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் கோடிக்கு மேல கடன் வாங்கி வச்சுட்டு போயிருக்கிற இன்னைக்கு அந்த தமிழ்நாடு அரசு இருக்கிறப்போ, கஜானாவை சுத்தமா தொடச்சி வலிச்சு வச்சுட்டு போயிருக்கிறப்போ, தூக்க முடியாத சுமையை ஏத்தி வச்சுட்டு போயிருக்கிறப்போ,
2: Stalin warned Vijay against blaming the previous government over the state's financial condition, asserting that Vijay only needs administrative skills. In his first decision as Chief Minister, Vijay signed his first set of official documents ordering 200 units of free power supply to every household, apart from a task force to tackle drugs and ensure women's safety. Tamil Nadu is already carrying a significant debt burden, and Vijay's additional promises can add more than rupees 1 lakh crore as cost to the exchequer. Superstar turned politician Vijay wants to run Tamil Nadu with a strong welfare model. But will this burn a significant hole in the state's coffers? Bureau Report, India Today.
0: Tamil Nadu's newest political spectacle has officially begun. Actor-turned-politician Vijay took oath as Chief Minister amid thunderous cheers at Chennai's Nehru Stadium, with supporters turning the swearing-in into a full-blown celebration. But the oath wasn't the only thing grabbing attention. Here's a look at all the moments that stole the spotlight.
3: Tirosi Joseph Vijay Avargal.
2: From theatres to secretariat, from being a real hero to becoming a real chief minister, Tamil Nadu has entered the Thalapathi era. Nehru Stadium turned into a political blockbuster premiere as deafening chants echoed through Chennai, while actor turned politician Vijay officially took oath as Tamil Nadu Chief Minister.
3: Sri Joseph Vijay enum naan. Tamil Nadu arasin mudhalamaichar endra murayil. எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும்
2: Dressed not in the classic white veshti but in a sharp black power suit, Vijay ripped up the rule book of Tamil politics. No old school optics, just dapper presence. Just sleek styling, swagger and a statement. It is said to be the first time in Tamil Nadu history that a chief minister has taken oath in a court suit instead of the traditional shirt and veshti.
4: Dressed sharply, looking rather dapper in a suit. When was the last time you saw someone, a chief minister, taking oath in a suit? I don't think we've ever seen it in the country. And that gives you a sense of what we're witnessing right now. All around me, you can hear chants of TVK. Everyone's got their phones out, they're cheering. This is the moment they've been waiting for.
2: And then came the cinema level twist. Back in 2009, Vijay reportedly wanted to join Rahul Gandhi's Congress. Fast forward to 2026, Rahul Gandhi sat in the front row as the smaller ally while Vijay took charge as the undisputed star of the show. The two leaders were seen chatting during the ceremony and even raised their joint hands together, a powerful visual underscoring their new political alliance.
3: மக்கள் நலன்களை மட்டுமே லட்சியமாக கொண்ட நமது அரசுக்கு பக்கபலமாக நின்று ஆதரவை வழங்கியுள்ள காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் தலைவர் மதிப்புக்குரிய திரு மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அவர்களை, பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள்.
2: But social media had another favorite frame. Trisha Krishnan, glowing in a turquoise Kanchivaram sari, cheering, smiling and hugging Vijay's family. Fans instantly declared it the ultimate Gilli reunion, only this time at a swearing-in ceremony.
5: The Honorable Chief Minister of Tamil Nadu.
2: And in pure Vijay style, the climax had to be massy. Moments after taking oath, the new chief minister pulled out his phone and recorded a giant selfie video with Rahul Gandhi and other leaders on stage and thousands of supporters behind him in the stadium. The dialogues are over, the swearing-in is done, and now it's time for action as Thalapathi Vijay steps into his biggest role ever. Chief Minister of Tamil Nadu. With Akshita Nandagopal in Chennai, Bureau Report, India Today.
0: The bromance of Rahul Gandhi and Vijay was on full display at TVK Chief swearing in. This rapport indicates the tectonic shift in Tamil Nadu's politics and why TVK and Congress have entered into a mutually beneficial alliance. Here's the report.
3: தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள்.
6: இட் இஸ் அ ப்ரோமான்ஸ் தட் டிஃபைன்ஸ் தி சேஞ்ச்ட் பொலிட்டிக்கல் ரியாலிட்டி இன் தமிழ்நாடு. Rahul Gandhi and Vijay shared incredible chemistry at Thalapathy's swearing-in ceremony. That rapport was clearly visible. The TVK Supremo and Rahul held each other's hands on stage and projected warmth. Vijay even referred to Rahul as his brother in his first speech as Chief Minister.
1: மக்கள் நலன்களை மட்டுமே லட்சியமாக கொண்ட நமது அரசுக்கு பக்கபலமாக நின்று ஆதரவை வழங்கியுள்ள காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் தலைவர் மதிப்புக்குரிய திரு மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அவர்களை, பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள்.
6: Vijay had met Rahul Gandhi as far back as 2009 to discuss possibly joining the Congress party, though it did not happen then. That early connection, however, planted the seeds of a relationship that would quietly deepen over the years. Furthermore, by aligning with Vijay and his rising TVK platform, Congress finally joins a government in Tamil Nadu for the first time in 6 decades. Combined with its footprint elsewhere in the south, the party now straddles power across 4 of 5 southern states. For Vijay, the bargain is equally clear-eyed. TVK is a young party with enormous popular energy, but thin political infrastructure. The Congress gives it instant national credibility, a secular identity, and a runway to the 2029 Lok Sabha elections. But while aligning with TVK, Rahul Gandhi effectively dealt a death blow to the India bloc, snapping Congress's decades-long ties with the DMK. A fact highlighted by PM Narendra Modi, who accused Congress of being a backstabber and parasitic for abandoning its oldest ally, the DMK.
7: जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया, तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया.
6: But for Congress, dumping the DMK for Vijay is part of a larger strategy to maximize its gains for the 2029 elections from the state of Tamil Nadu, a state where its influence and vote share are in constant decline. And it hopes to do so, rising piggyback on Vijay's TVK. Will that strategy suffice to fight back the behemoth called BJP? Bureau Report, India Today.
0: A political first in Tamil Nadu, a non-DMK, non-AIDMK chief minister takes oath after nearly 6 decades. Actor-turned-politician Vijay sworn in as chief minister. But within hours, a controversy erupts. An anthem row now clouding the big moment with CM Vijay ally CPI alleging that the Tamil anthem was insulted. At the heart of the row, the order of songs at the swear-in. The CPI is asking why was the Tamil anthem not played first and instead the state song was played third after Vande Mataram. CPI doubling down on its charges, saying Tamil anthem was not given its due place, calling it a violation of long-standing protocol. CPI also termed the decision to play a third as unacceptable and insisted the Vijay government must restore tradition immediately of Tamil anthem to be played first in the position at all official events. Now, amid mounting criticism, TVK distanced itself from the oath ceremony. TVK Minister Adav Arjuna said that the event was conducted under the governor and that the Tamil anthem will be placed first at all events.
8: Alunar dhaan ithagai nirbandhangalai thandirukkar. Eppozhudhume alunargal ivvaru dhaan nadandhu kolgirargal. Naam Indiyavude desi idathai national anthem migavum madikkirom. அதுக்கு ஒரு பெரிய அளவில் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். நேஷனல் ஆந்தம் நம்முடைய நாடு இந்தியா, அதனுடைய தேசிய கீதம் ஜனகணமன, அதை நாங்கள் மதிக்கிறோம். ஆனால் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கும் மேல், தமிழ் எங்கள் பிறவிக்கு தாய், பாவேந்தர் சொல்வது போல். எனவே தமிழுக்கு முதலிடம் தர வேண்டும். வந்தே மாதரம் குறித்து வாதிக்க வேண்டும் நாடாளுமன்றம்.
9: ஹியர் தி பிராக்டிஸ் இன் தமிழ்நாடு இஸ் டு பிளே தமிழ் ஆந்தம் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் எண்ட் நேஷனல் ஆந்தம். தட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர். பட் திஸ் டைம் தி கவர்னர் வாண்ட்ஸ் வந்தே மாதரம் டு பி சங் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தென் தமிழ் ஆந்தம். தட் இஸ் ராங். தட் இஸ் நாட் த ப்ராக்டிஸ் இன் தமிழ்நாடு. தட் ஷோஸ் தட் விஜய் இஸ் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் பிஜேபி.
10: A fresh controversy has erupted in Tamil Nadu just hours after the newly elected Chief Minister Joseph C. Vijay had been sworn in. In fact, during the swearing-in ceremony, the event of sequences went through such that at the concluding end, there was, Vande Mataram, there was the national anthem, and then the Tamil Thai Vaazhthu, which was... sang at the very last end. And that's what the CPI has questioned. CPI, remember, is one of the allies of TVK that has come out in support for the Tamilaga Vetri Kargam as they have gone ahead and formed the government. The question right now that CPI has placed before Vijay and TVK is that who was responsible for the changing of sequence?
0: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has carried out a major cabinet expansion in what is being seen as a significant political recalibration ahead of the 2027 assembly elections. As many as 6 ministerial berths were filled with an eye on the upcoming UP assembly polls. BJP is working on a strategy to give more representation to Brahmin, Jat, Dalit, Parsi, Valmiki, Loth and other backward communities as part of its caste calculus. Now, among new names, Kailash Rajput from Tirwa in Kannauj and Surendra Dilher from Kher in Aligarh have been inducted as ministers. Dilher, a prominent Dalit leader from the Valmiki community, is expected to represent the party's outreach to Dalit voters, while Rajput's inclusion is aimed at strengthening support from the Loth community. The development comes as a politically crucial time for the ruling BJP, which is looking to consolidate its social coalition after the setbacks it faced in Uttar Pradesh during the 2024 Lok Sabha elections.
11: तोमर जी, किस तरीके से देख रहे हैं जो एलिवेशन हुआ है?
12: देखिए, हम लोग विद्यार्थी परिषद के समय से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और हमारी पार्टी बड़ी बारीकी से, हमारा पार्टी नेतृत्व, राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व सभी चीजों की मॉनिटरिंग करता है. पार्टी ने जो निर्देश दिया है, सरकार का जो निर्देश है, जो दायित्व मिलेगा उसका निर्वहन करेंगे.
11: आज आप पहुंचे हैं, आपके पुराने मित्र सब वहां मौजूद रहे, क्या कहेंगे? बातचीत हुई, वार्ता हुई मुख्यमंत्री से, क्या कुछ आगे करना है?
12: देखिए, हम लोग टीम वर्क पे विश्वास करते हैं. एक टीम के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे.
11: गवर्नर साहिबा भी वहां मौजूद रही हैं, कुछ हिदायतें मिली हैं?
12: देखिए, लगातार उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता है और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उनका मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व लगातार उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहा है.
11: सपा सवाल उठा रही सियासत पे, यानी ये कुल मिलाकर जो जाति समीकरण की बात हो रही है, इन सारी चीजों पर?
12: देखिए, हम लोग सभी का साथ, सबके विकास की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर चलती है और वास्तव में सभी जातियों का सामंजस्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है.
13: कितना अच्छा दिन है आज, भारतीय जनता पार्टी मातृ डे है और मातृ डे में आज मुझे शपथ दिलाई है. तो आप जानते हो कि महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति कितना ज्यादा संवेदनशील है भारत.
11: अमित यादव सवाल उठा रहे हैं कि एक्सपेंशन को लेकर, कि समीकरणों को लेकर.
13: नहीं, वो गलत है, सब गलत है. वो अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है तो क्या बोले, यही बोलेंगे ना? कुछ बचा होता तो बोलते, कुछ बचा ही नहीं है. जो जब से 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम लोग नारा लगाते थे बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है. आज कोई उनको नारा लगाने के लिए नहीं है.
0: As the war escalates in West Asia and global markets remain on edge, Prime Minister Narendra Modi has issued an appeal to citizens, calling it the need of the hour. Prime Minister Modi has urged citizens to help conserve India's foreign exchange reserves amid fears of economic pressure from the conflict. The Prime Minister has appealed to people to use fuel efficiently and prefer public transport, and avoid buying new foreign products. He has also urged citizens to avoid buying gold and defer foreign travel for at least a year. Prime Minister Modi also called on families to reduce edible oil consumption and on farmers to cut chemical fertilizer usage by 50%. Prime Minister Modi reasoned that India spends massive foreign currency on oil imports, fertilizers and gold purchases. He appealed that patriotism is about responsible living during difficult times. He said at the same time that the government is bearing all the pressure of the war and not letting people bear the brunt. The remarks have triggered a sharp political backlash. The Congress has accused the Prime Minister of being clueless on energy security and pushing citizens into inconvenience instead of building strong contingency plans. Alleging lack of planning by the government, the Congress has demanded stronger fuel reserves to tackle any fallout from the West Asia crisis.
7: जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है. हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए. साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा. साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है. एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे. आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे. विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा. खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है. हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो. अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है. आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी. इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है. साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है. युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं. अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है. भारत सरकार इस युद्ध के पिछले दो महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। साथियों, कोरोना काल के दौरान ही दुनिया सप्लाई चेन के बहुत बड़े संकट से गिर गई थी। कोविड के बाद यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया, उसने दुनिया की परेशानियां और बढ़ा दी। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, इन तीनों चीजों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। बीते 5-6 वर्षों में इस संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपको याद होगा उस समय और आज भी फर्टिलाइजर की एक एक बोरी दुनिया में 3-3 हजार रुपये में बिक रही थी। एक बोरी का 3 हजार रुपया कितना आप बताएंगे? एक बोरी का कितना? आंकड़ा नहीं, बोलिए मुंह से। 3 हजार रुपया एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? और भारत के किसानों को वही खाद की बोरी 300 से भी कम रुपये में दी जा रही है।
0: That's all we have for you in this bulletin. Time for a short break now. More news updates continue on the other side.
14: You are watching India Today.
15: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
16: TuneIn has the music.
15: Take a vacation with poolside hits on TuneIn.
17: TuneIn Poolside has the music I love.
15: Vibe out in your poolside cabana with hits from iconic artists like Calvin Harris, Avicii, Bloom, and more. Listen to the best blend of house, techno, trance, and more from the hottest DJs. And get your pool party started. Just search Poolside or ask your device to play Poolside on TuneIn.

0: वाह दीदी वाह, सॉरी जा दीदी जा, बंगाल में भी कमल है खिला, वाह।
1: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे।
2: Joseph Vijayanam Nan.

0: of long-standing protocol. CPI also termed the decision to play a third as unacceptable and insisted the Vijay government must restore tradition immediately of Tamil anthem to be played first in the position at all official events. Now, amid mounting criticism, TVK distanced itself from the oath ceremony. TVK Minister Adavarjuna said that the event was conducted under the governor and that the Tamil anthem will be placed first at all events.
1: ஆளுநர் தான் இத்தகைய நிர்பந்தங்களை தந்திருக்கிறார். எப்பொழுதுமே ஆளுநர்கள் இவ்வாறுதான் நடந்து கொள்கிறார்கள். நாம் இந்தியாவுடைய தேசிய கீதத்தை நேஷனல் ஆந்தம் மிகவும் மதிக்கிறோம். அதுக்கு ரொம்ப பெரிய அளவில் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். நேஷனல் ஆந்தம் நம்முடைய நாடு இந்தியா, அதனுடைய தேசிய கீதம் ஜனகணமன, அதை நாங்கள் மதிக்கிறோம். ஆனால் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கும் மேல், தமிழ் எங்கள் பிறவிக்கு தாய், பாவேந்தர் சொல்வது போல். எனவே தமிழுக்கு முதலிடம் தர வேண்டும். வந்தே மாதரம் குறித்து வாதிக்க வேண்டும் நாடாளுமன்றம்.
2: Here the practice in Tamil Nadu is to play Tamil anthem first and the end national anthem. That is the procedure. But this time the governor wants Vande Mataram to be sung first and then Tamil anthem. That is wrong. That is not the practice in Tamil Nadu. That shows that Vijay is going towards BJP.
3: A fresh controversy has erupted in Tamil Nadu just hours after the newly elected Chief Minister Joseph C. Vijay had been sworn in. In fact, during the swearing-in ceremony, the event of sequences went through such that at the concluding end, there was, Vande Mataram, there was the national anthem, and then the Tamil Thai Vaazhthu, which was sang at the very last end. And that's what the CPI has questioned. CPI, remember, is one of the allies of TVK that has come out in support for the Tamilaga Vetri Kargam as they have gone ahead and formed the government. The question right now that CPI has placed before Vijay and TVK is that who was responsible for the changing of sequence?
0: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has carried out a major cabinet expansion in what is being seen as a significant political recalibration ahead of the 2027 assembly elections. As many as 6 ministerial berths were filled with an eye on the upcoming UP assembly polls. BJP is working on a strategy to give more representation to Brahmin, Jat, Dalit, Parsi, Valmiki, Loth and other backward communities as part of its caste calculus. Now, among new names, Kailash Rajput from Tirwa in Kannauj and Surendra Dilher from Kher in Aligarh have been inducted as ministers. Dilher, a prominent Dalit leader from the Valmiki community, is expected to represent the party's outreach to Dalit voters, while Rajput's inclusion is aimed at strengthening support from the Loth community. The development comes as a politically crucial time for the ruling BJP, which is looking to consolidate its social coalition after the setbacks it faced in Uttar Pradesh during the 2024 Lok Sabha elections.
4: तोमर जी, किस तरीके से देख रहे हैं जो एलिवेशन हुआ है?
5: देखिए, हम लोग विद्यार्थी परिषद के समय से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और हमारी पार्टी बड़ी बारीकी से, हमारा पार्टी नेतृत्व, राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व सभी चीजों की मॉनिटरिंग करता है. पार्टी ने जो निर्देश दिया है, सरकार का जो निर्देश है, जो दायित्व मिलेगा उसका निर्वहन करेंगे.
4: आज आप पहुंचे हैं, आपके पुराने मित्र सब वहां मौजूद रहे, क्या कहेंगे? बातचीत हुई, वार्ता हुई मुख्यमंत्री से, क्या कुछ आगे करना है?
5: देखिए, हम लोग टीम वर्क पे विश्वास करते हैं. एक टीम के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे.
4: गवर्नर साहिबा भी वहां मौजूद रही हैं, कुछ हिदायतें मिली हैं?
5: देखिए, लगातार उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता है. उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उनका मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व लगातार उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहा है.
4: सपा सवाल उठा रही सियासत पे, यानी ये कुल मिलाकर जो जाति समीकरण की बात हो रही है, इन सारी चीजों पर?
5: देखिए, हम लोग सभी का साथ, सबके विकास की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर चलती है और वास्तव में सभी जातियों का सामंजस्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है.
6: कितना अच्छा दिन है आज, भारतीय जनता पार्टी मातृ डे है और मातृ डे में आज मुझे शपथ दिलाई है, तो आप जानते हो कि महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति कितना ज्यादा संवेदनशील है भारत।
4: अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं एक्सपेंशन को लेकर, की समीकरणों को लेकर।
6: नहीं, वो गलत है, सब गलत है। वो अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है तो क्या बोले, यही बोलेंगे ना, कुछ बचा होता तो बोलते, कुछ बचा ही नहीं है। जो जब से 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम लोग नारा लगाते थे बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, आज कोई उनको नारा लगाने के लिए नहीं है।
0: As the war escalates in West Asia and global markets remain on edge, Prime Minister Narendra Modi has issued an appeal to citizens. Calling it the need of the hour, Prime Minister Modi has urged citizens to help conserve India's foreign exchange reserves amid fears of economic pressure from the conflict. The Prime Minister has appealed to people to use fuel efficiently and prefer public transport and avoid buying new foreign products. He has also urged citizens to avoid buying gold and defer foreign travel for at least a year. Prime Minister Modi also called on families to reduce edible oil consumption and on farmers to cut chemical fertilizer usage by 50%. Prime Minister Modi reasoned that India spends massive foreign currency on oil imports, fertilizers and gold purchases. He appealed that patriotism is about responsible living during difficult times. He said at the same time that the government is bearing all the pressure of the war and not letting people bear the brunt. The remarks have triggered a sharp political backlash. The Congress has accused the Prime Minister of being clueless on energy security and pushing citizens into inconvenience instead of building strong contingency plans. Alleging lack of planning by the government, the Congress has demanded stronger fuel reserves to tackle any fallout from the West Asia crisis.
7: जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का, मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो, अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। पिछले दो महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है। साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है। भारत सरकार इस युद्ध के पिछले दो महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। साथियों, कोरोना काल के दौरान ही दुनिया सप्लाई चेन के बहुत बड़े संकट से गिर गई थी। कोविड के बाद यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया, उसने दुनिया की परेशानियां और बढ़ा दी। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, इन तीनों चीजों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। बीते 5-6 वर्षों में इस संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपको याद होगा उस समय और आज भी फर्टिलाइजर की एक एक बोरी दुनिया में 3-3 हजार रुपये में बिक रही थी। एक बोरी का 3 हजार रुपया कितना आप बताएंगे? एक बोरी का कितना? आंकड़ा नहीं बोलिए मुंह से, 3 हजार रुपया। एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? और भारत के किसानों को वही खाद की बोरी 300 से भी कम रुपये में दी जा रही है।
0: That's all we have for you in this bulletin. Time for a short break now. More news updates continue on the other side.
8: You are watching India Today.
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
10: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears.
11: It's my music and it's my station.
10: Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.

0: So after Prime Minister Modi's appeal to curb the consumption of fuel and also to not buy gold at least for a year in order for the situation to get better as far as the foreign exchange reserve is concerned, what we're learning is that the top ministers will be having a key meeting which will be chaired by Defence Minister Rajnath Singh. So Raksha Mantri Rajnath Singh will be chairing this key meeting, and the top ministers, the top Modi ministers will be meeting at 10:30 a.m. today, and the secretaries will be briefing the ministers on the West Asia crisis. The key meeting of the group of ministers following Prime Minister Modi's appeal amidst the West Asia crisis. And now what we're learning is that Defence Minister Rajnath Singh will be chairing this meeting at 10:30 a.m. today. And my colleague Himanshu Mishra is now joining us with more details on this. Himanshu, aur kya jankari mil rahi hai is meeting ke bare mein jo 10:30 baje hone wali hai, kya kuch discuss kiya ja sakta hai isme?
1: देखिए, क्योंकि ये जो IGOM बनाई हुई है, ये जो भी वेस्ट एशिया के लेके जो क्राइसिस है उस पर किस तरीके से सरकार को रणनीति के तहत काम करना है और इन जो भी चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए सरकार जो है वो स्ट्रेटेजी बनाती है, और सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि सभी मंत्रालय मिलकर जो है वो एक साथ काम करें, और यही कारण है कि टाइम टू टाइम जो है वो राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर है, क्योंकि वो इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग को जो है वो चेयर कर रहे हैं और हमेशा करते हैं इस मीटिंग में। आज भी 10:30 बजे जो मीटिंग है, जो वेस्ट एशिया में नए तरीके के क्राइसिस फिर से शुरू हुए हैं उसको लेकर मीटिंग होगी कि किस तरीके से सरकार को जो है आगे आकर अल्टरनेट रूट्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो या गैस हो या अन्य ऐसी वस्तुएं जो हम विदेशों से आयात करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, उनका उपयोग कम हो, और अगर वो स्टेट ऑफ हॉर्मोस से आ रहे हैं तो उसका अल्टरनेट रूट क्या हो सकते हैं, या किस तरीके से जो है ईरान के साथ बातचीत करके वहां से स्टेट ऑफ हॉर्मोस से जो है वो हमारे जो शिप्स हैं वो निकल पाएंगे। तमाम तरीके के इश्यूज पे जो है वो डिस्कशन होगा, और इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर रहेंगे, पीयूष गोयल है।
0: जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। सो अ की मीटिंग विल बी हेल्ड एट 10:30 a.m. टुडे ऑन द वेस्ट एशिया क्राइसिस विच विल बी चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ऑफ कोर्स दिस कम्स आफ्टर द अपील दैट वाज मेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी यस्टरडे। With that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching India Today. Do stay tuned with us for our Democratic Newsroom show on the other side on Tamil Nadu Chief Minister Vijay.

विष्णुरा विष्णु श्रीमदा भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो।

0: राग नया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णरमन्यौ
1: तोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः। जाते रुद्रशिवातनुरघोरापापकाशिनीतया नत्तन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकृषीः जामिखों गिरिशन्तास्ते बिभ्रगतवे शिवाङ्गेरित्रतां कुरुमायि गोषेः पुरुखं जगता शिवेन चात्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः सर्वमिज्ञागादयस्मगो सुमनाशता अध्योचदयुक्ता प्रथमो।
2: तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह
0: श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन संकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च

0: spoken about crop insurance and Beti Padhao, Beti Bachao scheme of the government.
1: Bishwakarma Yojonay, amader jara Bishwakarma achen, hater kaj koren. Amader tamar kumor theke kumbhokar, shornokar theke malakar theke.
0: The people who work with tools,
1: napit theke,
0: all of those people who work using tools, the Vishwakarmas,
1: abedon kore rekhechilen,
0: who are deprived all this while.
1: Jader abedon jela shasokderke diye kendrer MSME daptore pathate denni.
0: We will also allow them to benefit from the center's MSME schemes that they were deprived of. He's referring to the workers in the state who use tools. The Ujala scheme that the women were deprived of in Bengal, they will also be getting benefits of that scheme.
1: Sabche highest. 400 taka kom mulle tara gas kroy koren.
0: You heard from the West Bengal Chief Minister. Now let's go straight across to Prime Minister Narendra Modi, who is in Somnath in Gujarat today. Let's take a listen.
2: 1000 varsh baad bhi Somnath ke Aminashi hone ka garv aur aaj is aadhunik swarup ki prana pratishtha ke 75 varsh hum keval दो आयोजनों का हिस्सा भर नहीं, सिर्फ हिस्सा भर नहीं बने हैं, हमें हजार वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का शिवजी ने मौका दिया है। साथियों, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। साथियों, इसलिए आज इस अवसर पर मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके। और मैं यहां देख रहा हूं सोमनाथ का अमृत महोत्सव ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। मैं सभी देशवासियों को दादा सोमनाथ के कोटि कोटि भक्तों को इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया, भारत, उसकी ये हैसियत, ये कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे? और दुनिया की आंखें लाल हो गई, दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें, तो आगे के रास्ते दिखते नहीं है। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें, तो आगे के रास्ते दिखते नहीं है। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। साथियों, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की आराधना ये हमारी परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आपको याद होगा जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब चंद्रमा पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ, उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़ा है।

और शिव शक्ति से जुड़े हैं। और ये कितना सुखद है कि चंद्रमा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को हम सोमनाथ कहते हैं। साथियों, शिव और शक्ति की हमारी आराधना का जो विचार है वो देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी प्रेरणा बने। आज हम ये संकल्प साकार होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के चरणों से सभी देशवासियों को ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ की भी बधाई देता हूं। साथियों, जब मैं पिछली बार यहां आया था तब मैंने कहा था, जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो उसे नष्ट कौन कर सकता है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए। लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है, इसलिए अलग अलग काल में अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। लकुलिश और सोम शर्मा जैसे कितने मनीषी, उन्होंने प्रभास पाटन क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया, इसे शैव साधना और दर्शन का महान केंद्र बनाया। भाव बृहस्पति, पाशुपताचार्यों और अनेक विद्वानों ने इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपराओं को जीवित रखा। विशाल देव और त्रिपुरांतक जैसे व्यक्तित्वों ने यहां की बौद्धिक चेतना को सुरक्षित रखने का पुनीत कार्य किया। साथियों, वीर हमीर जी गोहिल, वीर वेगड़ा जी भील, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी, बड़ोदरा के गायकवाड़ जाम साहब महाराजा दिग्विजय सिंह जी, ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व

अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के एम मुंशी जी ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं। इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विडंबना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा है किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। साथियों, बीते वर्षों में मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है। साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी हुआ है।

जैसा मैंने पहले कहा, अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। साथियों, ऐसे कितने ही पवित्र तीर्थ, पवित्र मठ, मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें उस समृद्ध परंपरा के दर्शन होने लगे हैं। और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा देश के विकास में बड़ी बाधा रही है, क्योंकि हमारे तीर्थ भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे हैं। आज आप देखिए, चार धाम महामार्ग परियोजना, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना, करतारपुर कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास, इनके जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं, हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं, वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इससे प्रदेश और देश में प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलित्वम ब्रह्म, अर्थात सृष्टि का हरेक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है, हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हमें ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो। साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़कर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं, एक दूसरे में प्राण पूरने वाली शक्तियां हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जब वो अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक

0: are watching India Today.
1: Welcome back. There's been an appeal by Prime Minister Modi toward the citizens of this country. The fact that the West Asia conflict is still on, and even though India, of course, is in no way involved with the conflict, but the repercussions are being felt world over, even for India. So here's what Prime Minister Modi has said, and very categorically asking people also to follow a certain form of austerity. What does that mean? Calling it need of the hour, Prime Minister Modi has urged people to conserve India's foreign exchange reserves and practice restraint in consumption of any kind. But Rahul Gandhi has hit out at this, and he's accusing the government of now shifting the burden onto the citizens instead of the government handling the crisis, and that there is no proper planning. He questioned why people should pay for what he called the center's failure on energy security. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav also attacked the center and joined Rahul Gandhi in those attacks against the government. And this is what SP chief Akhilesh Yadav said. He called BJP the country's biggest crisis, questioning the promise of a $5 trillion economy. He said inflation and unemployment are already hurting citizens. PM's appeal spreads fear also instead of confidence. India's effort to shield consumers from the global energy shock is meanwhile proving costly. State-run oil firms are reportedly losing nearly 1,600 to 1,700 crore rupees daily, losses crossing 1 lakh crore in just 10 weeks since the war began. Despite crude price surging nearly 50% globally, petrol and diesel price in India remain unchanged at two-year-old levels. Officials warn that if crude prices stay high, higher borrowings and even a fuel price hike may soon become inevitable. Remember yesterday, Prime Minister appealed to citizens to use fuel efficiently, prefer public transport, avoid buying gold and unnecessary foreign goods, defer foreign travel, reduce edible oil consumption and cut chemical fertilizer usage by 50%.
2: पिछले दो महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है. इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है. साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है. युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं. अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है. भारत सरकार इस युद्ध के पिछले दो महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. नागरिकों पर बोझ न पड़े इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है. जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है, हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए. साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा. साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है. एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे. आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। साथियों, कोरोना काल के दौरान ही दुनिया सप्लाई चेन के बहुत बड़े संकट से गिर गई थी। कोविड के बाद यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया, उसने दुनिया की परेशानियां और बढ़ा दी। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, इन तीनों चीजों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। बीते 5-6 वर्षों में इस संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपको याद होगा उस समय और आज भी फर्टिलाइजर की एक एक बोरी दुनिया में 3-3 हजार रुपये में बिक रही थी। एक बोरी का 3 हजार रुपया कितना आप बताएंगे? एक बोरी का कितना? आंकड़ा नहीं, बोलिए मुंह से। 3 हजार रुपया एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? और भारत के किसानों को वही खाद की बोरी 300 से भी कम रुपये में दी जा रही है। खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हम बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारी धरती मां को बहुत पीड़ा हो रही है, हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दे और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं।
1: So after that message from Prime Minister Modi and looking at the whole situation in West Asia, are we expecting a fuel hike or hikes in the times to come? Now, why this is representative of what's been happening vis-a-vis the war and the impact on crude oil? Government oil firms have lost about 1 lakh crore rupees in just 10 weeks. Remember, there have been consistent statements of there have been hike on some commodities, while there's not been a hike on some, even though it was expected. But loss per day to these oil firms, as the statements have also come in, is 1,600 to 1,700 crore rupees. Petrol, diesel prices.

एलआईसी हर पल आपके साथ। जियो मार्ट, टाइम और पैसे दोनों बचाए। ड्यूलक्स अश्योरेंस,

0: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station. Enjoy a carefully brewed mix of soft acoustic sounds
1: with artists like James Bay,
2: come on, let it go.
0: Nora Jones,
3: my heart is drained.
0: Daniel Caesar,
4: we both know how,
0: and much more as you sink into a good book or get lost in your work. Just search Coffee House. Or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो, अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ये देश का मुद्दा है और इसके लिए हर नागरिक, हर राजनीतिक दल, हर सरकार, हर समाज, हर संगठन को संकल्पबद्ध होगा। मैं मीडिया के साथियों से भी देश हित में आगे आने के लिए आग्रह करूंगा। आइए देशभक्ति का भाव जगाएं और देश को जो वैश्विक संकट चल रहे हैं, देश उस संकटों का लाभ ले, परिस्थिति पे सवार हो जाए, ऐसा वातावरण बनाने के लिए हमें योगदान देना होगा और तभी जाकर के देश सफल होगा।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
4: उनके नेता पहले भाग चुके जो 15 साल तक लोगों को इतना अत्याचार किया लूटा पीटा वो पहले घर खाली कर दिए अपने पत्नी को छोड़कर भाग गए ऐसे बड़े बड़े नेता टीएमसी के हैं नहीं यहाँ जनता 50 साल से डर डर के जी रही है पहले उनका डर खत्म करना है माननीय प्रधानमंत्री बोल के आए थे भाई आउट भरोसा इन बीजेपी को वोट दिन आज वही करना है उन लोग डर डर के नहीं जियेंगे उच्च चित्त जता भय चिन्ह उच्च जता शीर ये हमारे होम मिनिस्टर ने बोले हैं लोग से सर ऊंचा करके हिम्मत से जिएंगे लोगों को रामनवमी करने नहीं दिया जाता है और रास्ता में खड़ा होकर गाय की मांस खाते थे लोग ये कल्चर भारत बंगाल का नहीं है उसको बदलना है वंदे मातरम जनगण मन बंगाल का बांग्लादेश का राष्ट्रगीत हमारा सोनार बांग्ला श्रीलंका का राष्ट्रगीत यही रचना हुआ है हमारे कवियों ने लिखा है ऋषि बंकिम ने रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है ये बंगाल को अपने जगह पर प्रतिष्ठित करना हमारा जिम्मेदारी है

0: बराबाद से भी बात करके बोला, स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिए लड़की के साथ हिम्मत दिलाना है और उनके जो पिटिशन से सर इंक्वायरी करना चाहिए। बंडी संजय हमारा एमपी है, मैं उसको एडवाइस देना चाहता हूं, जब आपके बेटे के ऊपर कंप्लेंट आया उसको किसी राजनीतिक मंच पे रोके उसके सिंपति गेन करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, आप खुद इंक्वायरी के लिए ऑर्डर करिए, आप खुद वॉलेंटरली आपके बेटे को हैंड ओवर करके उसके ऊपर जो भी जांच करे, अगर गलती करे तो पनिशमेंट मिलेगा, नहीं गलती करे तो ठीक है। इसमें तेलंगाना सरकार का क्या कसूर है?
1: The delay in filing the FIR on the survivor's complaint has raised serious questions about the investigation itself. Can the police ensure a fair probe and put all doubts to the rest? With Abdul Bashir, Bureau Report, India Today.
2: I leave you tonight, though, with our image of the day, the Prime Minister visiting the Somnath Temple in Gujarat to participate in the Grand Somnath Amrit Mahotsav being organized at the historic temple. The occasion marks 75 years of the reconstruction of the revered temple. I leave you with that image. Thanks for watching. Stay well, stay safe. Good night, Shubh Ratri. Jai Hind, Namaskar.